अंतरगामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, आप जी के पावन स्थान सतखंड दरबार दादरी भरते हुए आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत प्रमुखा प्यारे शब्द माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम नाम सिखे दान की बख्शिश करने गुरु सिखे जीवन बख्शो नाम दे आरोगता समूह संसार दिया मनोकामनाएं पूर्ण करने नाम वाणी नार प्यार चुना दर प्रवान करनी यात्रा सफल करनी।

अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकरम हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड।

आग ते कनू का गोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनों का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते गच मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपछ उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पछ को करेंगे भच, केतक प्रत्यच हो पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज ऋण, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। फूकत फिरत केत रोवत मरत केत, जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग बासी केत मदिना मक्का निवासी, केतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत, सुअ पे चढ़त केत दुख को भरत है। गैन में उड़त केत जल में रहत केत, ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर, दानव वड्डे बोध हर, बोधक प्रबोध हर, जापसी घास हर, चंदन लगाए हर, चोचार बूज हर, बाहन चढ़ाए हर, लापसी गाह हर, गोरन मनाए हर, मड़ी मटलीप हर, फीतन लगाए हर, छापसी गाय हर, गंधर्व बजाए हर, किन्नर सब पच हर, पंडित तप

चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत वाणी कहूं यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की वृष्टि की रिष्ट कन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या हूतं प्रभाव कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे।

जांचे जिगत करता सदीव हरता सनातासन अडोल अनुभूत करम ताता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान दे नेह गेह नहीं व्योत बान। जेह जात बात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम साम नहीं बर्क ब्याद जेह रोग शोक नहीं शत्रु साध जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय भंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेव जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देसन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झूलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को हार कई कर्त साक पै पत्र भच्छ नई तदब देव हो बत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व परीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद गरम कहूँ अग्न होत्र कई तीर्थ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत भांतर विचार नहीं नैकतास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोहरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तब तास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई यगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब तास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदब दिश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होम अर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जूह जुअंग भय गंपह मेर भयाल भुवंग तप तापस सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भ्यंग अनखंड भूत छेद छ्यंग अनकाल अपाल दयाल स्वयं जेठट्यंग मेरा काश भुवं अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रच्यंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रच्यंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभवत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल तरिकंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजंगी ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग
जहे अंडज सेतज जेर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली। भू अमेर आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई। जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नरगंधर्व देव देव सच्चे। अंधूत भूत छूत मतंगन गात व्याद अनाद गतंगन खेद वेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग। जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग। गण किन्नर जचे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग। अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह। जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर। जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जब है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट वृति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल।

सदा भेव भेव नाद है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है, सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पुत्र जानी है। नराग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म वेग है। न तात माद जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेघ सेघ भेघ है, सदीव विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व भरण है, जिमी जमान के भी है, सदीव करम भरम है। अद्वैख है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई। न कर्म में, न धर्म में, न भरम में बताइए, अगंज आद देव है, कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के अभिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न

गे है, ना जात है, ना बात है, ना मंत्र है, ना मित्र है, ना तात है, ना मात है, ना अंग है, ना रंग है, ना संग है, ना साथ है, ना दोग है, ना दाग है, ना द्वैख है, ना देह है, ना सिंह है, ना स्यार है, ना राव है, ना रंग है, ना मान है, ना मात है, ना साक है, ना संक है, ना जच है, ना गंधर्व है, ना नर है, ना नार है, ना चोर है, ना साहू है, ना शाह को कुमार है, ना नेह है, ना गेह है, ना देह को बनाव है, ना छल है, ना छिद्र है, ना

है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाव है। न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है। परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है। अकाल है, अपार है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है। न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है। न सीत है, न सोच है, न घाम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है। न देव है, न दैध है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ।

कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को विष्ट है कहाँ सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्टा।

सहति सन्नाहन अश्व प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलं जय जय हो सीम खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलं चाचर चमकारं छुर हारं धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीम खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकार धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट

संकटी निवारण दम धारण तेज प्रकर्षण द्वंद तवे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अकादछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तवत प्रतापण जबत जीवे जय जय होसी सहस्र प्रकर्षण आद अनिल अकाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच्छ सरे गर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हुसी रक्ता सुरख।

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारं सन्ना है दुष्ट प्रदा है हर दल गाहे दोख हरे। गंजन गुमान अतुल प्राण संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खास और मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्व गहीली जोत जतीली दुंद मते अष्टायत चमकन शस्त्र झमकन दामे दमकन आद वृते डुकडुकी दमंगे बाघ भुवंगे ऊजा फरंगे शुद्ध गति जय जय हो सी मैं खास और मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुन मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल।

बारक नी मन गारे पछ पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमावत वेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोजी नटारे कीट पतंग को रंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव ना वेव रखियो भ्रम सियो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन सरी पदमापत।

है। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन स्नेह सभूतन नेह विरक्त गेह छह है। जान को देत जमान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद्मा।

मनो कर दय कर पाप समूह न भेट न पावे। और की बात कहा कहे दो सौ सो भेट ही के बड़ बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातर जच भुजंग सब सरन्यावे। पाय सके ने पार प्रभाओं को ने दही ने तह वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो। भेद कतेव न भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद से दसनाथ सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तेह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पजहारे। भेद न पाय सके अन भेद को खीजत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद वेख अद्वेख जपे तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुत दान महाव्रत धारे। देश व्यय कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वह न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंध को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया। छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़ैया। अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के देवैया महामान हो के मान है। ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव। काल हो के काल महाकाल हो के काल है। पूर्व बिना पार बाव हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर कर दिज गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना की तेक बांधे। अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कोरे सी जाने। पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मराठा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगवाली। दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेरी वीर। बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीर मचीन के शीश ने आवे। तिब्बते थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश। गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइय न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे। चिट्ठी की चिंघार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार। केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी। केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण। केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूरन को पावे पार। ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारा पार। पाई न पार व अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी। महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है। जंत्र हूँ न जात जाके बाब हूँ न माय जाके। पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के। मोह होने को मंत्र है निजंत्र के खजानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के। शुद्धता को कर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है। रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के। क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अपनासी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हों के काल है के सत्रन के साल है के। मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हों को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के। मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के। सिद्धता को पास है के बुद्ध हों को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। देवन को देव है के शुद्धता को सर है।
जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के काम ना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, केसरी है ना नर है। विश्व को वरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है ना पार पार वार हूं को पार, जगो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गवे हब सी हल पिधावे, पूर भी न पार पावे, असत्य नाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवनाद अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा, महाजोग हूं को जोग है, धरैया ध्रुव छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के, हंसनी सी सिहारो हीरा सी हुसनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़, कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है, हिमासी हिमालय हर हार सी हलप्पा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदावाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के तुरंगी, मकरान के वृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भकरी गंधारी गोर गखरी गदजाचारी, पौन के हरि तेरो नाम ध्याइयत है, पूरब पलव काम रूपो कमाऊ सर्व ठौर में विराज, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेता बिना तकीरत तिहारी को।

0: श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम ऐने पुष्कर गमन प्रसंग वर्णन नाम पंच त्रिंशति अंशु
1: इथे सात संगत जी इस अध्याय की समाप्ति अगला अध्याय ओदी

दास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए। धृग जीव धृग जीवास जिन हरजन सतगुर संगत पाई। तिन धर्मस्तक लखिया लखास धन धन सत संगत।

ते धर सब हों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ

मूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का छीनत नह भिव, आप आपनी बुद है जीती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहय मरे, पुरख जवन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा,

दुष्ट दोख ते लेहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरण सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलधुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे, सोई दुख न तिसै ब्यापै।

चौपई को कह चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत

साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारे चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मरीदो सच्यारे प्यारे सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास, तस्से अगे नानका खलै कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊची मत पत का राखा आप, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतेह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। थम जी, नड़काने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरिमंदर दिल्ली, मैं शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। भगौण साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक जीरा जी, शिकारघाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, माल्टेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारिया, निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी, बोलो जी, बोलो बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजुर अमृतमय शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोधर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहेबंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बस तन्ना पैरे अनिस पैरे मोन हिता तुम जाके गृपिन सुखता पगो पे तना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर चाय पाए मुर कंधे पत गवाए।

श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोयना कूड़ पा

जाजुग जान जीव धरत काय सच किछ देखता भी सचता प्रजाने जा सिख सच ले दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे सचता प्रजाने जा आत्म

0: श्लोक महल्ला पहला दुखदार श्लोक भया जा सकता ना हो तुम करता करना में ना ही जा फरी ना हो बलिहारी कुत दस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कल कला पर भूरे आ तू सच्चा साहिब सब साले जिन की ती सब पार पया कहो नानक करते किया माता जो कुछ करना सो कर महल्ला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कत्री शब्दं सुर शब्दं सुद

0: हे कृष्णं सर्वदेवा देव देवतात्मा आत्मा वासुदेव जप जाने पे नानक ताका दास है।
1: स्वयं निरंजन देव महिमा पहला।

0: अगे वत सियाने पितरी चोर करे बढ़िया हाथ लाल के मसवीए करे नानक अगे सुमिल जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोर सिर नावने आवे वार वार जुटे जुटा मुकसे।

जेकर सतक मनिए सत सतक हा गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाणियां की जिया बाज न कोई पहला पानी जो है जिथरिया सतोय सुत क्यों कर रखिए।

कनिष्ट कन पहले द्वार खाए नानक साधवी बदे जमपुर जाए महला पहला सपो सुतक प्रमाद जल घे जाए जमन मरना हुक्म है पहने आवे जाए खाना पीना पवित्र दि तुर जग संभाए।